0: एक गीत और सुन दे जिस दशिंदा
1: भाई, बल्ले बल्ले बल्ले भाई, ऐसा नजारा आ गया भाई।
2: देखो ना जी, इतनी सोनी जन लेके आया है।
1: लो भाई, अमली का ब्याह भी हो गया। वो ताली जेतों वाले ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई और जिंदा बहुत बैठा बैठा हो जाए
2: माल को ला दें।
1: भाई वाह वाह वाह वा।

आज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत स्रोतियो ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला भाखदे मसले लिआउण वाला पंजाब दी सैर करवाउण वाला हक सच दे ढोल वजाउण वाला

0: घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये भुसत जात, अपने ही जाल में फसत जात, हम मरत जात।

0: आजा पिया तोहे प्यार दू, ओ गोरी भैया तोहे प्यार दू।
1: वाह वाह वाह राधा जी, आज मदर डेरी है तुहानू पता है
0: जी।
1: हां जी,
0: हां जी, बिल्कुल पता है जी।
1: दुनिया दी सोहणियां मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे
0: जी? बिल्कुल, एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
0: हां जी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा,
0: यूपी च मंजली या मंजला भरा विचकारले रहंदे। अच्छा,
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफ्ज आए, थैंक यू।
0: मंजली दीदी।
1: अच्छा, मंजली दीदी, ठीक है।
0: हां जी, उच्च सचिन छोटा जिहा सीगा ते उदे उत्ते गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उत्ते।
1: अच्छा, सुणाओ जी।
0: ते ए गीत वैसे तो सारे मावां लई इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
1: होई है, ये ते काफी
0: ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा,
0: ते जेड़ा मैं आप जी नूं सुणाउण लगी हां ओह किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा,
0: और क्योंकि मेरा शौक रहा ते मैनू तो फिर बचपन के सारे गीत
1: याद ने जी। मैं बिल्कुल
0: जी, ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्ने गीत याद रखने। मेरे ख्याल कि 200-250 गीत मेनू मुंह जवानी बचपन की याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है, हॉबी है तुहाडी
0: जी? हां जी बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देन है, मेरी मां ने कहा गुड्डी तेनू ए गीत याद है, तू ए गीत सुना।
1: अच्छा, तुहाडा नाम ना तुहाडा गुड्डी हुंदा सी?
0: हां जी, हुंदा नहीं सी, हुण वी आ।
1: अच्छा, हुण वी तुहानू गुड्डी?
0: तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे हो? आ जा हुण।
1: चलो जी, मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नाम नाल मुखातिब करांगा। बहुत सोहना नाम है गुड्डी। आम पिंडां विच हुंदा है कुड़ियां दे नाम
0: जी। ते मेरे नानी जी ते मेरे फादर मेनू गुड्डो कहंदे सी, प्यार नाल
1: गुड्डो। गुड्डी, हां जी हां जी
0: हां जी। ते ओ गीत मैं आप जी ने
1: बोला, नानी नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहंदे सी?
0: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहंदे हुंदे सी?
0: उदों कहंदे सी नी गुड्डो सुनन दई आ उरे आई। तैनू सुनंदा नी? एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा,
0: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ?
0: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ
1: ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
0: ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁੱਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਿਆ ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਚਕ ਦਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਰੇਬਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
1: ਹਾਂ,
0: ਮੈਂ ਚੁੱਪ
1: ਹਾਂ।
0: ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੀ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हास्से खिलारदा।

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जी दियां कालां लांगा। मैं मुकद्दर दा

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ व्हाट यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड लवली फनी वर्ल्ड विद योर ओन वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस We are only for knowledge. That's the beauty.

करार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो सीआरओ रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फॉर